Koi brahmana koi sarapa parada duadre kahana make mati bhaikana sarataha koi kheli rahe kate घर हो प्रहला घर हो दाल की थोड़ी मऊ वर्ष महापति मरी गए मेरो विपत के कहूँ की मथी विवाह करी दिए बूढ़ा कुरुती कना मेरे वर्ष

पानी घुंदई एक दिन आई पर सरारी से आए पुखे धनी तारी देव मल बारी अले जानू भने थे जसाई

0: ये गोपी नी काली नी का किना काली सारी चाहिए गोरी चाहिए लानी को
1: अच्छा को देखो चाहिए
2: ना मैंने तो मलम नहीं
3: हाथ
4: जोड़ी कर।

ही चोरे माखन चोरे चोरे चोरी साड़ी धर्मानंत पाप चोरे तारे भवदला पा

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: परिकोड दोलखा
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: मिति 2083 साल असोज 4 गते आइतबार एकाई नम्बर 2 क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कार्यक्रम स्थल मसन डाँडा ठेगाना भीमेश्वर नगरपालिका 1 क्षेमावती दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 भीम माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका 3 र 6 कालिङचोक माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका 3 चरीकोट दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका 4 सर्व माध्यमिक विद्यालय टहले मन्दिर भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 टहले दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 महेन्द्र द्वे माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका 5 माटी दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका 5 नयाँ पुल बजार भीमेश्वर नगरपालिका 5 नयाँ पुल बजार दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका 5 बुढा भीमसेन माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका 5 किराती छाप दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका 7 कुटीडाँडा माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका 7 मकैबारी दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका 7 कुप्री प्राथमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका 7 कुप्री दुलखा भीमेश्वर नगरपालिका 8 र 9 देवी माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका 8 बोस दुलखा
1: मिति 2083 साल असोज 10 गते शनिबार इकाई नम्बर 3 क्षेत्र काठमाडौँ कार्यक्रम स्थल न्यू त्रिशक्ति पार्टी प्यालेस ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका 32 पेप्सिकोला काठमाडौँ 2083 साल असोज 13 गते मंगलबार क्षेत्र मुख्य निर्णय प्रमाणित कार्यक्रम स्थल संस्थाको मुख्य कार्यालय ठेगाना भीमेश्वर नगरपालिका 6 चरीकोट दोलखा पुनश्च केही दुविधा भएमा संस्थाको फोन नम्बर 0949-421-397 0949-421-943 0949-421-539 0949-421-303 मा फोन गरी जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।
0: ठाकुर प्रसाद पाठक सचिव मिलीजुली कालिङचोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चरीकोट दोलखा। यो रेडियो सैलुङको समय सूचक हो। यति बेला साँझको 6 बजेको छ।

0: Bunnia. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: नमस्कार रेडियो सहयोग सामुदायिक एफएम बैठने में थोपलो 7 MHz बद्रीप्रसाद साहब को आज विक्रम संबत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 5 तारीख भाद्र 20 गते शनिवार आज श्री कृष्ण रथ यात्रा नवमी तिथि अब स्तुति करूं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पयभरी।

राजा नवोश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होश पवन जाई नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान।